जी गुरु गरीब निवान उत्तर जाने सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां पर गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जन कृपा के नेमत बख्शिश करनी देह रुका दे नाम दत्त

काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। नमस्कार गुरदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया भव जल विचों कड कै मुक्त पदार्थ माहे समाया। जिहवा एक कवन गुण कहिए बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिए। ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी गुर तेग बहादुर परम किरपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरों तरा पर पुन पुन शीशा बंदों बार बार जगतीशा। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह है बिगन बिनासन सोए। वाहे गुरु जी की फतेह है बिगन बिनासन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार अनुराग। गुरु ग्रंथ साहेब उदद बंदों कार अनुराग।

गोपते नसर बेदरंगे आप अदनानुग गोबी संज्ञाकार प्रभुजी साय दरबार मित्र दरबार सत्क्रम से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुम्हें दरबार सब देवते के नमस्कार दूरा नानुग गोबी संजी पूर्ण व्यापार जगमग ज्योत व्यापार श्री अब्दुल ग्रापा।

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी के भावना स्थान सतखंड दरबार जी हाजरी भरदे हो आप जी कृपा वाणी का सत्कार करते हो बेअंत प्रमुखा प्यारियों शब्द हेठ माया हाजर होइए सच्चे पातशाह नाम दान सके दान की बख्शिश करने गुरसिखी जोर बख्शो नाम दे आरोपा समूह संगता दिया मनोकामना पूर्ण करने नाम बाणी नाल प्यार बख्शना हाजरी दर प्रवान करनी यात्रा सफरी करनी सिखो शब्द यारियो जन्म मरण की

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल चौर छत्र तखत सिंघासन दे मालक गुरता गद्दी उत्ते विराजमान दोहां जहाना दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु

एक श्री छंद अजय लय भय भय भू अजो नासकास गंज भंज लख पख काल दयाल अलेग अभेग नाम गाह डाना थे ब्रह्मा थे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रखे अकर्मंग अभरमंग अंज लिखे भुजंग प्रियाद छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निर्कामंग भिभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग भिभूते सदा सच्चिदान सतंग प्रणासी करी मूल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय भिभूते गजायब गनी मे हरियंग करी मूल रही मे चत्र चक्रवर्ती चज्र भुगते स्वयं भाव सुभंग सर्वदा सर्व युगते दुकालंग प्रणा

आगे लिखारी के दस्तखत तो प्रसाद चौपाई प्रणवो आदि कंकारा जल थल मयल कियो पसारा आद प्रगव गद अविनाशी लोक चतर दा ज्योत प्रकाशे हस्त कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सर जाना अदब अलख पुरख अभगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अच्छे अनभेखा राग रंग जय रूप ना रेखा बरन चैन सब होते न्यारा आद पुरख अदब अभिकारा बरन चैन जय जात न पाता सत्र मित्र जह तात न माता सबते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद पानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्म

नेत नेत मुख चार बतायो, कोट इंद्र उपेंद्र बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए, लोग चतरदत खेल रचायो, बाहर आप ही बीच मिलायो, दानव देव फनिंद अपारा, गंधर्व जाच्छ रचा सुविचारा, भूत भवे के भवाने कहानी, घट घट के

सर्व जोत के बीच समाना, सबहु सर्व ठार पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता, जात पात जय चेहना बरना, अवगत देव अक्षय अनभरमा, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दोकन को हरता, एक चेत जय है एक।

कात हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कात हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कात हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी, कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो, कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तास बेपरीद, कहूँ त्रिगुण अतेद कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जज गंधर्व ओरक कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो, कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपद जपे हो, कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोप काव होय के पुराण को पढ़त मत कत हूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो, कत हूँ विचार अविचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारद आहारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्मधामी कहूँ सर्व ठौर गामी, कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कोई डंडी हो पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो, कत हूँ सिपाही हो के साधत सिलाहन का, कहूँ क्षत्रिय हो के अर मारत मरत हो, कहूँ भू भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कत हूँ पयुग हो के पीवत पीवावत हो, कत हूँ मयुग कहूँ मदपान हो, कहूँ माँ असुर हो के मारत मवासन को, कहूँ माँ देव देवतान के समान हो, कहूँ महाधीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुतत कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पौनहारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छालाधारे छल भारी, कहूँ छक्के भारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाया, कहूँ नृत्य के नचया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूपो के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया की तमानी महामान हो, विद्या के विचारों के अदव्य अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो, जोवन के जाल हो के काल हो के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत हो अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ इकांति को जाप, कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग तेडगत हो, कहूँ बार देत कहूँ छाल सिंह छिनाए ले, सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो, तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समोसे धान के, देख फिर घर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुदाद के, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे मत को ना देखत प्राण पति के, श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे,
कोट तुरंग तुरंग से उदत पौन के गौन को जात निवार भारी भुजान के भूत भविल भली पेत न्यावत शीस ना जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब देव दिशान को बाजा ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवे के भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे में अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक विशेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन हार जति जधार सब सो विचार हजार के देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सो दुसुपा तुरंत दुबा सो सासना दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरी ने मरोर में वासन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपाद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचार सार की धार बछैया तोरा देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक दविया दानव देव फने निशाचर भूत भवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुण्य प्रतापन बाढ़ जाय धन पापन के बहु पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र राधे जौंत्र लोग को राज करेंगे कोट स्नान के जातिक दान एक स्वयंवर साज मरेंगे ब्रह्म महेश्वर विषण सची पद अंत फसे जम फांस पड़ेंगे जे नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैसे बित

पाहन पूज धर्यो सिर काहू ललिंग कर लटकायो। काहू लख्यो रवाची दिशा में काहू पूछा को शीश निभायो। को उबतान को पूजत है पस को उग्रतान को पूजन धायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेदना।

अकलंक रूप अपार अन छज तेज उदार अन भेज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भांत चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापे हो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अन भेज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को न कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार मुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कऊ कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव सन्यास कऊ जोग भेद उदास कऊ निवली कर्म करंत कऊ पौन हार दुरंत कऊ तीरा दान अपार कऊ जग कर्म उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमृत रीत कहूँ वेद सिंह विपरीत कई देद फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ कर जल में जाप कहूँ सहतन परता कहूँ बाद बनय करंत कहूँ ताप तनह सहंत कहूँ ग्रस्त धर्म अपार कहूँ राजजीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख ना उचरंत बैरा कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म भोकट जान सब धर्म नहपल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तब प्रसाद लघुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहा हरि वहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेक हरि अधोक हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि अप्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि झितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमी तुहि जमा तुहि वकी तुहि मका तुहि अभूतुहि अभय तुहि अछूतुहि अछय तुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तुहि।

कुरानो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे आगते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूरते अनेक धूर पूरते धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नत्ते तरंग कोट उपजते पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपर सब ताही में समाएंगे। केते का चमच केते उनको करत भच्छ केते अच्छे वच्छ हुए सपच्छ उठ जाएंगे। केते नब बीज आज पच्छ को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज हुआ तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपर सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के भ्रमाए फिरत है। करवत सहद केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के भीन जग जारे मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन लड़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सत्य दाबद्ध दाबृद रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहाँ वासता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा का कहा वह कहा का बखानो कह मैं ना अवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैकंग अभेकंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। परेयंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशिया छेदंग अछे आदद्वय विनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाय उसारे गड़े फेरे मेटे बनाए। अगाधे अभय आदद्वय विनाशी परेयंग परापरम पूरण प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग अभूतंग अभेखंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अक्षय आदद्वय अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध विरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अक्षय आद अवित अथापे विमुक्तंग अक्षय आद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरमंग न सर्मंग न साके न भरमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न वितरंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद्रूपे नमो आद्रूपे। कहूँ कंज के मंज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म अलूले कहूँ देश के भेष के धर्म थामे कहूँ राज के साज के बाज तामे कहूँ अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूँ अंग के रंग के संग दे के कहूँ जंग के रंग पेखे कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चेतर रूपंग कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपंग कहूँ ने गृहंग कहूँ देह दोखंग कहूँ गौ खदी रोग के सोग शोकंग कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी
कहूँ राजसी साधकी तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग युक्तं, कहूँ भूम की भुगत में भरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जज विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या, कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ के रेष्ठ पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ वेववाणी, कहूँ कोप की काव कथा कहानी, कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं, कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं, कहूँ परम पुराण को पार पावे, कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे, कहूँ शुद्ध सेकं कहूँ ब्रह्म धर्मं, कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं, कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रह देह कहूँ ने देहं, कहूँ त्याग गृहं, कहूँ योग भोगं कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं, कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं, कहूँ आरबी तोर की पारसी हो, कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूँ देश भाग्या कहूँ देववाणी, कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी, कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग, कहूँ जंत्र रीतं कहूँ छत्र धारंग, कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा, कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा, कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं, कहूँ मलेज भाग्या कहूँ वेद रीतं, कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी, कहूँ गारुड़ गुड़ कथा कहानी, कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो, कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभाहो, कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी, कहूँ राज साजंग राजाधिकारी, नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, अच्छे दी अच्छे आज अदब विधाता, न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे, नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते, तो प्रसाद पादड़ी छंद अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अनाश अनतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अनशेज कार्यकर्ता सदीव हरता सनात आसन डोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म ज्ञान जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने ब्योध पान जय जात पा नहीं शत्रु मित्र जय ने गे ने चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम भेग जय कर्म भरम नहीं जान।

जय काल बयाल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप योग साधंत दुरंत तन शीत घा बरखा संत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तदा पावत न पार कई उर्द बाह देशन ब्रह्मंद कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कौब काहत कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करद कोट मृत को आहार कई करद साग पे पत्र भच्छ नहीं तदब देह होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहु वेद री जग आदि करम कहु अगन होत्र कहु तीरथ धर्म कई देद देद भाखा रटन कई देद देद विद्या पढ़ंत कई करंत भांत भांतन विचार नहीं नायक ताल पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमसो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप ताल पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमरे शास्त्र उचरसो करम निवलियाद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मक्को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहु अर्घदान कहु पितर कर्म कहु वेद रीत कहु नृत्य नाच कहु गान गीत कहु कर शास्त्र सिमरंत उच्चार कई भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गेह वाद कई भ्रम दे सन उदार कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्परंग पजंत नहीं तदव दास पायत न अंत कई करत कोड विद्या विचार नहीं तदव दिश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पो जुगण जुव जुवंग भय कंपो मेरे पयाल भुवंग तप ताप सर्व जले रुथलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अन खेद स्वरूप भेद अभियंग अन खंड अभूत छेद छियंग अन काल पाल दियाल सुंग जय ठट्यंग मेर काल भुवंग अन खंड अमंड प्रचंड रंग जय रचंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग शरम कीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय खेद न भेद न छेद सयंग जय जात न पात न माद पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेग न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रस तामस तेज तेज की अनुभव पद आप प्रचंड लियो से सिंदर बिंद नगेंद्र नगंग श्री जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड सेतन उल भुजंग के देव देव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम्पे किन्नर जच जुवंग नर नान नपुंसक जाय किए गण किन्नर जज भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गणंग भव भूत भविक भवान तुवंग जय अंड सेत जय रजन भूम काल पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बलि बन जास की फल फूल कली भो मेरा का निवास हितंग रज रोज का द चंद्र वितंग दोत चंद दिने स दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय अखंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्थ चार रचे नर गंधर्व देव देव सचे अन धूता भूता छूत मतंग अन गाधव आदन आद कतंग अन खेद अभेद छेद नरंग जय चार चतुर्द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आद सिरंग जय बंद देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज मृतंग जय पार न पावर पूर मतंग अन खंड सरुआ दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सो सिंध दो मुक्ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नय नय कृपा निध पान परे जय फोकर धर्म सब तज है चेत कृपा निध को जप है तेव या भव सागर को तर है भव भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना नय कोट वृत्ति इम वेद उच्चारण सार सुति जो वारस के जस के रस है तेव भूल न काल
फंदा फस है। तो प्रसान राज छंद अक्षदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है। समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदयु सर्व साथ है। अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है। सदैव शुद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप अछेज तेज मानिए। सदैव शुद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है। अजोग दा कदक है भूत भ्रम अभेक है। न तात मात जात है न पाचयन भरण है। अधेक अशेक अभेक विश्व सदयु विश्व भरण है। विश्वंबर विश्वनाथ अभिषेक विश्व भरण है। जमी जमान के विख सदयु करम भरम है। अद्वैक है अवेक है अलेखना ज्ञानी है। सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नेत का बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताई है। गंज आ देव है कह सो कैस पाई है। जिमी जमान के विख समस्त एक ज्योत है। न घाट है न बाढ़ है न घाट भाट होत है। न हान है न बान है समान रूप जानी है। मकीन औ मकान प्रमाण तेज मानी है। न देह है न गेह है न जात है न पात है। न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न सात है। न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौल है न साक है न संक है। न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाको कुमार है। न नेह है न गे है न देव को बनाओ है। न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है। न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को स्वरूप है। न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को बनाओ है। न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है। न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है न

संग है ना साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, ना सीत है, ना सोच है, ना घ्राम है, ना घाम है, ना लोभ है, ना वो है, ना क्रोध है, ना काम है, ना देव है, ना दैत है, ना नर को स्वरूप है, ना छल है, ना छिद्र है, ना छिद्र की विभूत है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना द्वैग है, ना भेक है, ना दुई है, ना द्रोह है, ना काल है, ना बाल है, सजीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, भर्म है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेग है, बलिया रूप राग रंग है, ना द्वैग है, ना भेक है, ना काम क्रोध कर्म है, ना जात है, ना पात है, ना चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत जानिए, भूम अभिज है, सदा छेद तेज मानिए, ना आद है, ना व्याध है, अगाध रूप लेखिया, दोग है, अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए, ना कर्म में, ना भरम में, ना धर्म को प्रभाव है, ना जंत्र है, ना तंत्र है, ना मंत्र को रलाव है, ना छल है, ना छिद्र है, ना छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, नंग है, अगंज सी विभूत है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ ओकार है, ना आद है, ना ज्ञान है, ना व्याध को विचार है, ना रंग राग रूप है, ना रूप रेख रार है, ना हाव है, ना भाव है, ना दाव को प्रकार है, गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा, सितजपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आजे बड़े तपस्पति विशेखी है, बेंत बेंत बेंत को करंत पाट पेखिए, अगाध आदेव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए, सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देह के आनंद भांत सोध है, तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन, आद नाद गाद वृक्षो धर्म करम प्रवीण, जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद पुरग अपार, हथ कीट बिखे विषय सब ठौर में निर्धार, जात पात न ता जागो मंत्र मातना मित्र, सर्व ठौर बिखे रमियो जय चक्र चैन चित्र, आद देव दार मुरद नाद नाद अनंत, आद अंत न जानी अभिखा देव तुरंत, देव भेव न जानी जय मरम वेद गते, सनक अवसन के नंदन पावई न हसे, जज किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही से सकरो मुखचार, सर्व शब्द पतार के तर जापी है जय जाप, आदेव गादे नाद मुरद ताप, जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो विराज धराज राज प्रवीन, जज गंधर देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैष्णव के बिखे विराजे सूत्र विवन आहे, गुड़ गौर न भील भीकर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्ध न भूम काश अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन, तीर जात न देव पूजा गौर के न अधीन, सर्व सपद पतार के तर जानिए जय ज्योत, शेष नाम संस्फन नेद पूरन होत, सो सोध हटे सब असुर विरोध दानो, सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ, पढ़त पढ़त थके महाकब गणत गाढ़ अनंत, हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत, भेद भेद न पायो लखे न सेव कतेब, देव दानो मूढ़ जमानो जच न जाने जेब, भूत भव भवान भूपद आद नाद नाथ, अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास, दे गे न ने सने अबे नाद अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व तेयन भीत, सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयानद भेक, चक्र चेना भरन जागो जात पात न भेक, रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व खाय सर्व तेयन भंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंद याल स्वामी आदेव पाल, दीन बंद प्रवीण श्रीपत सर्व को करतार, भरन चैन चक्र जागो चक्र चैन अकार, जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न भरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन, दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम प्रग प्रमाथ, दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ करता जगत में जयगात, भूत भव भगवान प्रमाण देव अगंज, आद अंतना श्रीपस परम प्रग अभंज, धर्म के अन करम जे तक कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार, भूम का जले थले में मानिए जय नाम, दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम, दोष्ट अर्ना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद, मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद, अखाड दंडन दोष्ट खंडन काल हुंके काल, दोष्ट हरण पुष्ट करण सर्व के प्रतपाल,
सर्व

सर्वता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दोष्ट हर्ता बेस भर्ता आज रूप अपार दोष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब विचार आदेव पार।

गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब नहीं पाइये तै पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट तुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाज पच्छर पार, सो सो थके मासुर पायो न पार। तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरे मस्यु बैन, सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बितैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जी तब का मरण है, कवन सुर कह नरक को, सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक। दोहरा को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म, कवन जोग को भोग है कवन कर्म अब कर्म। दोहरा कम कहो सो सम का सो कह, दम को कहा कहंत को सूरा दाता। कवन कहो तंत को मन दोहरा, कहा रंग राजा कवन हरक सोग है कवन। को रोगी रागी कवन कहो तत मोहे तवन दोहरा, कवन रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ अचेत प्रकाश। दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान, को रोगी शोकी कवन कहाँ धर्म की हान। दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहाँ जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। तो प्रसाद दीरक तिर भंगी छंद, दुर्जन दल दंडन असुर विहंदन, दुष्ट निकंदन आदृते चतरासुर मारण, पति धारण नरक निवारण गुण गते। अक्षय खंडे देर टंडे खजुर डंडे अलग मते, जय जय हुसी मय का सुर मर्दन, राम कपर्दन छत्र छिते। आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन, रूपते चंडासुर चंडन बुंड विहंडन, धूम्र विदंसन महक मथे। दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्दह दे, जय जय हुसी मय का सुर मर्दन, राम कपर्दन आदृते। डावरू डबंके बबर बबंके, भुजा फरंके तेज भरंग, लंगुड़िया फादे आयुध पांदे, सैन विमर्दन काल सुरंग। अष्टाय चमके भूकण दमके, असी झमके फुंग फरंग, जय जय हुसी मय कासुर मर्दन, राम कपर्दन दय दिजनंग। चंडा सुर चंडन मुंड विमंडन, खंडा खंडन खून खिते, दामनी तमंगण धुजा फरंकण, फणी फुंकारण जो जिते। सरदार विमरकण दोष प्रकरकण, पुष्प हरकण दुष्ट मते, जय जय जय हुसी मय कासुर मर्दन, भूम का तल उर्दे। दामनी प्रहासन सुषभ निवासन, श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते, रक्तासुराचन ध्वज प्रमाचन, हृदय निराचन धर्म वृते। श्रोणता चिंती अनल विनती, जोग जयंती खड़क धरे, जय जय हुसी मय कासुर मर्दन, पाप विनाशन धर्म करे। अगोग निवारण दोष प्रजान, श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते, फणियर फुंकारण बाघ बकारण, शस्त्र प्रहारण साध मते। जय जय जय जय जय हुसी मय कासुर मर्दन, भूम काल पताल जलंग, सैती स्नान अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग। जय जय हुसी मय कासुर मर्दन, भूम काल पताल जलंग, चाचर चमकारण चिच्छुर हारण, धूम दुकारण द्रव मथे। दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज थंते, गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन, सूरज प्रतिदन अश्वभुजे। जय जय होसी मय कासुर मर्दन, करम विनाशन धर्म तुझे। घुंघरू घमंकण शास्त्र झमंकण, फणियर फुंकारण धर्म तुझे। अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन, दोष प्रणासन चक्र गते। केसरी प्रवाह शुद्ध सनाया गमता एक वृते, जय जय होसी मय कासुर मर्दन, आदि कुमार काल वृते। सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन, भ्रष्ट विनाशन वृत मथे। कावरु कुमारे अधम उदारे, नरक निवारे आदंते, किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन, सिंगारोहण बितल तले। जय जय होसी समठार निवासन, बाय पताल काल आकाश अनले। संकट निवारण अधम उदाहरण, तेज प्रकरण तुंद तबे दुख दोग दहंती, जाल जयंती आद नाद गात अच्छे। शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण, तपस प्रतापण जबत जीवे। जय जय होसी शस्त्र प्रकरण, आद नील अगाध अभे। चंचला चखंगी अलग भुजंगी, तुंत रंगण तच सरे कर कसाक उठारे, नग निवारे अधम उधारे तूर भुजे। दामनी दमन के हल्लंके, आद अतंके क्रूर गते। जय जय होसी रक्तासुर खंडन, सोम चक्र निसोम मथे। बारज विलोचन ब्रितन विमोचन, सोज विसोचन कौज कसे। दामनी प्रहासे सुखसर नासे, सुब्रे सुवासे दृष्ट ग्रसे। चंचला प्रंगी भेद प्रसंगी, ते तुरंगी खंड सुरंग। जय जय होसी मय का सुर मर्दन, आद नाद गाद उर्धंग। घंट का विराज रुणजन बाजे, भ्रम भय बाजे सुन सुरंग। कोकल सुन लाजे कल विग भाजे, सुग उपराजे मधुरंग। दुर्जन दल दझे मंथन रिझे, सब न भजे रोहरणंग। जय जय होसी मय का सुर मर्दन, चंड चकर्दन आद गुरंग। चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन, रोष अरोधन क्रूर बिते। धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजोसन, जग विध्वंसन शुद्ध मते।

जयंती सत्र मथन ते दुष प्रदाहन गाड़ मते जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन आज उगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद नंगी अगाद गते बिर राज बिहंडन चच्छर दंडन ते चंडन आद गते सुर नर प्रत पारण पद उधारण दोष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन विश्व विधन सर श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाश से उन्तर ना से ज्योत प्रकाश से अतुल बले दानवी प्रकार खण व सर्वर वरखण दोष प्रधर खण बितल तले अष्टायल बाण बोलनी बाण संत पनाहन गुण गते जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन आद अनाद गाद वृते दुख दो प्रवचन से उग्रचन संत प्रत्यक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दोष प्रदाय अर्दल गाये दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्व गई ली जो जती ली तुंद मते अष्टायल छमकण छत्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुगी दमंक बाघ बबंक भुजा फरंक शुद्ध गते जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन आज उगाद अनाद मते चचरासुर मारन नरक निवारण पद धारण एक फटे पापाण विहंदन दुष्ट चंडन खंड खंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद धारे मुंड मथे जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानो अर्दन विडाल बधे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म ध्वजे धूमराज प्रजुदन धूमराज विध्वंसन श्रोण चुनसन सोम निपार निसोम मथे जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम की वो आप करते प्रसाद जब दब अभूत अन भय अनंत कहो तथा मत तैन तत् जदब भूत अन भय अनंत तो कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद भय भूत अन भय दयाल दाता दुरंग दुख दोगर हद्य नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो पनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिरदा कराए प्रभ एक रूप द्वाय कैल खाए अन छज तेज अन भय का दाता दुर्गत भयनाथ सब रोग शोक ते रहत रूपन भय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पर नि भेद भ्रम जय रंग रूप नि एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप चल पार जानी ना जय जय रूप रे कह बास तास कह कौन फेक कह नाम तास कवन जा जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग ब्रह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनिश्चित तेज अनभिज्ञ

कई कोट इंद्र जय पान हार कई करण रुद्र जुगिया दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत ने निधिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे ने संत उपार गनीमन कारे पच पशु नग नाग नरादि सर्व समय सबको व्रत पारे भोगत है जल में थल में पल में कल के ने कर्म विचारे दीन दयाल दया ने दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दु दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रिय संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद गते भवेद उचारे रोजी ही राज लोग राज रोग रोहान की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भगवान बनाए देव देव खपे हमें ना भेव लखे ब्रह्म शिव वरमाए वेद पुराण के देव पुराण हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सेव केन श्री पद्मापद पाए आद अनंत अगाध अद्वैत सो भूत भविक भवान वह है अंत विहीना नातम आद आगा दोग सिद्र छह है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभु है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद मापदे है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देवी हिंसन सबोतन ने भ्रक्त गय है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्रीपद मापद ल है।

रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे सत्रो अनेक चलाओ दिखाओ तहु तन एक ना लागन पावे राख जाय अपनो कर दे कर पाप समूह ना भेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीज बचावे जज भुजंग सो दाना दे अभे तुमे सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रथा चल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सके नि पार बाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही कुजिया सुर हार परे हर हाथ ना आवे नारद से चतर आनंद से रुम नारिक से सब हूं मिल गायो वेद कते बिना भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सेज सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितो सब जग छायो भेद पुराण देव पुराण भेद निर्पाण सब बनिहारे भेद ना पा सके अन भेद को खेदत हैं अन छेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संगति हारे आदे अनादे अगादे अभेगत भेग जपियो तिन्ही कुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वदान महाव्रत धारे देश प्रियो कर भेद तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कपित अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया मां सत्रन के साल है दान के दिवैया मां मान के बड़े आओ शान के दिवैया कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया मां बुद्ध के दिवैया मां मानु के मान है ज्ञान हु के गाता मां बुद्ध ताके दाता देव काल हु के काल मां काल हु के काल है पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय धावे गौर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बाधे अरब के अरबी अराबे ते आराध्य तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने ने जे काम है मरहटा मंगले तेरी मानसो तपस्या करे दड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंगसी बुंदेले पापुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश नियावे तिब्बती द्याव देख दलत है जिन्हें तो है ध्यायो तीरे पूरा ने प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दान बान को महित गंग दान को अभेद कहियत है रंग में रंगी राग रूप में प्रवीण और काहू पे ना दीन साथ अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदारे अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचाता है चिट्टी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सस्य राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जज कहियत है करते है विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे आकार खानिये अदवे अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूप हो के राशि है अनासी कह के मानिए जंत्र हुना जाजा की बाप हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा कह न मानिए तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानिए तेज हुको तरह के राशि को सारे के शुद्धता घरे के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की शान है विरक्ता की वान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूप के रूपों को रूप कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है काम को गनिंदा के खुबी को दीनदा के गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है कालू के काले के सतरन के साले के मित्रन को भुगत के वृतता की वासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचे मान को दबैया जम जाल को कटे कामना कर है तेज को प्रचंड

अखंड को खंड है, महिपन को मंड है, के त्रिहना नर है। विश्व को भरने के, आपदा को हरने के, सुख को करने के, तेज को प्रकाश है। पाइये न पार, पारा बार हु को पार जागो, गिजत विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय दगावे, हब सिंह लबी धावे, पूरी बिना पार पावे, आशा ते अनाश है। देवन को देव, माँ देव हु के देव है, निरंजन अभेव नाथ अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन, प्रवीण के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के। देवन के देव, माँ देव हु के देव नाथ, भूम के भुजैया मुह माँ बाल के। राजन के राजा, माँ साज हु के साजा, माँ जोग हु को जोग है, धरैया ध्रुव छाल के। कामना के करे के बुद्धता को हरे के, शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावा, छात कैसी छतरा ने, छपा कैसी छप, कालिंद्री के कुल के। हंसनी सी सिहारूम, हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली, सातो सिंध रूल के। परासी पलावगढ़, रूपा कैसी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद, निके रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट, चांदनी सी चांदागढ़, कीरा तिहारी रही मालती सी फूल के। पटक सी कैलाश कमावगढ़, काशीपुर सीसा संगा, सीसा सी सुरंगाबाद, निके सोही अत है। हिम्मा सी हिमालय हर, हाब सी हल्लब्बा ने, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही अत है। चंदन सी चंपा, चंदन सी चंपावती, चंद्रमा सी चंद्रागिर, चांदनी सी चांदागढ़, जोन जोही अत है। गंगा सम गंगधार, वकांसी बिलंदाबाद, की रति हारी की उजारी सोही अत है। फरासी फिरंगी, फरासी इसके दुरंगी, मकरान के मृदंगी, तेरे गीत गाइयत है। भखरी गंदारी घोर कखरी, कर दे जा जारी, पान के हरी तेरो नाम ध्यायत है। पूरा पलाऊ काम रूपा, उस गमाऊ सर्व ठौर में भी राजे, जहां जहां जाइयत है। पूरन प्रतापी जंत्र।

अद्वै अनास आसन डोल अद्वै अनंत उपमा तोल अच्छा स्वरूप अभ्यक्त न आजान बाव सर्वं प्रमाद जाता वही बंतन प्रफुल्ल शोभा वसन जाता प्रडुल्ल बंतन दुरंत खग मृग महान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लहत मोर सुर ढुर जान मन मत

मितोज मोह रोसंग व्रत करना निधान जाता प्रफुल सुंदर सुजान बंतन महीप जल तल महान जाता प्रसो करना निधान जगमग तेर पूरन प्रताप अंबर जमीन

मूर्त राजा रानी मन मुखी दिल मुरवाला राजा रानी मन मुखी दिल मुरवाला